जय नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ। थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814।

0: அப்பே என்ன பாரு சொல்ட்டி வாஸ்கு டிவி போக்குற இடையோ நீக்கே அத்தார்மா சாவுத்த
1: கொச்சை பரிலைலை கொஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்கியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொடி பனவுனி புக்கா உலாத்த ஓயினா
0: त्यति कुरामा पनि चिन्ता गर्नु पर्छ त सदरमुकाम चरीकोट बाटो चरी घ्याङ जाने बाटोमा रहेको हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा लैजाउन त्यहाँ त तिम्रो बिग्रेको टिभी मात्र होइन कि मोबाइल घडी सबै पनि हाल्छन् नि सकेको नि
1: त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्समा 32 इन्चदेखि माथिको एलइडी किन्दा डिस्काउन्ट सितैमा यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलइडी एलसीडी टिभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ टिभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ
3: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814
4: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य रस कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जन पक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: व्यापार अवरुद्ध होना अरबों रुपया को कारोबार घुमी घुसा। एक सूत्र को पुनरुत्थान कर लागे 45 अरब 45 करोड़ रुपए आवश्यक पर प्रतिवेदन ले दिखाई घुसा। बिल्की 5 बजे को हम समाचार बुलेटिन यदि नहीं अरे बिल्की 7 बजे हम विशेष समाचार बुलेटिन सुन सक्नुहुनेछ। यो समाचार बुलेटिन बाट म सृजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
1: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
2: आफै होइन ए पाँडे सोल्ट।

0: घर घर माधन जिंछ हमर रेडियो हेलो मन मन माधन जिंछ हमर रेडियो घर घर माधन जिंछ हमर रेडियो
1: नया नेपाल को नया आवाज आवाज विहीनहरुको आवाज जन आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज

विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जन पक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।